Tāwā tūkī yāntā sīdhā yāgī. Nāmrīk bē, yāni, kāshūr pūkī. Chī sūnvē tēngi yā, nāngā tātū pūkī, mācū kūchīgī. Nāng zīmbē, tā pūkī tā, tāksum shūgār bē, kāntā chī, mīngdē shākwa tsamshī. तो जिन्हें तो हमने सुनकर आ रहे थे इन्हें नाम ज़िम्बाब्वे या को चिदर पे न्यावल नाव नहीं थी चुटुबा तो के रंगचुटुबा जीता सुनकर आ रहे हैं तेरे से मैं ना 呃, 去团结定的买呢，哎，那个排名是要用出来买的。